Kasang ngashi dhiringi dhikrim tangpe skor ushu na. Dhikrim tangpe nanga dhaksa chuzot ulton tang skarma jib chusha kisika tatpanang chani dhikrim isana zateni na skon la atundup gyatso pulkane isungur. Naziru tene pulkane na te sharif yang tatpanang chani dhikrim isting chukpeka ishe lhamo tang topa guni pulkane choslu isana zaten. आकाशवाणी दिल्ली ने क्या तक समाचार प्रभात इसके तंग समाचार का मॉर्निंग न्यूज़ सनातन इसके तंग पेड़ का चेंग गुर में तंग दर्जे नमजल इसके साल का निलूरी इस सनातन का तो चुदो उसके का लदाख सनानसुल रुको तंग समाचार का मोहम्मद शफीरी ले तंग चेंग रोल माइंस के साल का निलूरी सनातन

kasang ache tening degrim ngispes kor oshuna degrim ispena pito chucho tshkne ka la da sana na sun na sana jaten chka tang skal ma shkne ka skon la chering tundu be sal khane logic sana jaten hi antes ting ne chering ang chuk tang nam ya lang chuk ne ske sal khane logic sana jaten chka tang phel ka fal melo chka tang skal ma chunga ai ka ngaje degrim one skor gun टू का काश फने दिल्ली ने हिंदी ना नसुल टुक तंग स्कर्मशकी का अंग्रेज़ी ना नसुल सनाता देन। पितो चुचो टुक तंग स्कर्मशकी का गम्यूल पिस्कतलों ने रिक्रिम सनाता देन। चुचो टुक तंग स्कर्मशिप चुचो का मार्मी क्योंतों ने फेर रिक्रिम नांगा फिल्मेलो सनाता देन। तों तंग स्कर्मशकी का लदक्षना नसुल तंग डेल्चेट सनाता देन। Pido chuchot ultun tang pendeka tuwche dol mesal kane lurik sanazadin. Akash fane sena kane ultun tang skarma shibchuka urdena nasul tang tapsara sanazadin. Tsani chuchot rkiadeka pomogone dikrim sanazadin rkiad tang pendeka kadeja banu sal kane balti ghazalik sanazadin. Akash fane deli nirkiat tang skarma jibcho jayka samachar sandhya guika News 8 9 hiang arku tang skarma jayka urdina nasul sanazaden. Ngachi deri nga dikrim nispes ting jukpeka chane chuzot urku tang petne ischo chukpa. Tsewang nurpo tang stanzin namyal niske salka nilurik sanazaden. Kasata igunin pin ngachi deri nga dikrim tangpo tang nispes korgun.

0: tat pano sine tikre mesting juk peka da sangi sharang e ishe lamo tang thopa gun phul kha ne choice lo senajats nga je akash fani le ne ishun jik tang in kha do chu jot ar kya chong tok ka je da akash fani de de ne is samachar prabhat ya testing ne morning news senajat
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर

0: जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नई पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं रिग्नेनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व

0: अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले दो से तीन दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
1: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA बराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
3: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
5: Central to the visit was the adoption of a joint action plan which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions 21st century. Both nations launched a joint innovation partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for the industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanked Sweden for its support following the Pahalgam terror attack, reaffirming a joint commitment to global stability. Finally, the visit celebrated a shared intellectual legacy and broader regional cooperation. To commemorate the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to Sweden, both countries initiated the Tagore Sweden Lecture Series and exchanged unique gifts, including replicas of Tagore's handwritten epigrams found in Swedish archives. The presence of European Commission's President Ursula von der Leyen highlighted the visit's importance to the India-Euro partnership, with a renewed push for the India-Euro Free Trade Agreement, described as the mother of all deals, to unlock new opportunities for innovators and investors alike.
6: We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat.
5: Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
4: Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. Highlighting India's rapid economic transformation, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development in India.
7: Vodafone, Ericsson, Nokia, Orange जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है. भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI enabled networks, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है.
4: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary of West, Sibi George, said that CEOs and senior industry leaders highlighted the significant changes they have witnessed in India in recent years,
8: which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
4: In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third Indian-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the Indian-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in Indian-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. Congress leader V.D. Satheeshan will be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Keralam Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will administer him oath of office and secrecy at a function in Thiruvananthapuram this morning. The Chief Minister-designate unveiled a 21-member UDF cabinet last evening ahead of today's swearing-in ceremony. More from our correspondent.
9: The Congress-led UDF ministry is being sworn in today in Keralam after a gap of 10 years. The Chief Minister and 20 other ministers will take oath at a function organized at Central Stadium, Thiruvananthapuram. 16 members of the new ministry, including Chief Minister V.D. Satheeshan, are becoming ministers for the first time. UDF workers in large numbers have been arriving in the state capital since yesterday afternoon to witness the swearing-in ceremony. Senior leaders, including Congress President Mallika Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, the chief ministers of Karnataka, Himachal Pradesh and Telangana, outgoing chief minister Pinarayi Vijayan and BJP state president Rajiv Chandrasekharan are expected to attend the ceremony today. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
4: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

फिल्मेले टिक्रिमे को जुक पेका दक्षिण चरंगे आशा भोसले तांग एसपी बाला सुब्रमण्यम निस्के सलखने सागर फिल्मेलो सनाजाज कसताई सिंह ने जगजीत सिंह सलखने प्रेम गीत फिल्मेलो सनाजादेन इंदेवर सोमाजत खनलो यंग श्रीकन जगजीत सिंह

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: फेलवेलोगुन संगल लंगसा आकाशवाणी लेने संचिसला फुलिंजिकतांग इन
1: करती हूँ मिन्नतें बार बार।
2: कैसे?

0: Dakhsang yi charang e film lorik sanajat nga che akash phane le ne ichung chik ta in nga to chu chu ur chu song tok ka sa ta ngi me su chu ki su pa fm gol te le sanajat
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दो देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। ईरान द्वारा अमेरिका की प्रमुख शर्तों को मानने से इंकार करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को दिशा देने पर वैश्विक संवाद में शामिल होंगे और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के लिए नए अवसरों की पहचान करने पर सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। उन्होंने पिछले कई वर्षों में निरंतर आर्थिक सुधारों के कारण देश में हुए परिवर्तन की सराहना भी की है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का जिक्र किया।
3: which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his meetings today with the CEOs and other senior leaders from the business, they all highlighted about their interest. You know, they have been observing India for last few years. They have been investing in India for last few years. What they have seen is a complete transformation in India in the last few years. They emphasized that.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में महीनों से जारी अशांति के बाद यूरेनियम भंडार, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध से संबंधित नुकसान के मुआवजे पर वार्ता ठप होने के कारण ईरान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है।
5: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समय बीत रहा है। उन्होंने ईरान से समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति की तीखी टिप्पणी ईरान की मीडिया द्वारा अमेरिका की वार्ता फिर से शुरू करने की मुख्य शर्तें उजागर करने के कुछ ही घंटों बाद आई हैं। ईरान की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका चाहता है कि ईरान 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और केवल एक परमाणु संयंत्र को सक्रिय रखे। अमेरिका युद्ध मुआवजे की मांग को भी छोड़ना चाहता है और ये स्वीकार करना चाहता है कि ईरान की अधिकांश जब्त संपत्तियां अवरुद्ध रहेंगी। अमेरिका ये भी चाहता है कि क्षेत्रीय संघर्ष वार्ता पूरी होने के बाद ही समाप्त हो। इस बीच ईरान ने इन शर्तों को खारिज कर दिया है और वार्ता फिर शुरू करने के लिए शर्तें रखी हैं। ईरान ने कहा कि क्षेत्र में विशेष रूप से लेबनान में सैन्य अभियान बंद होने चाहिए, प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए और ईरान की जब्त संपत्तियां जारी की जानी चाहिए। ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान के मुआवजे और होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने नियंत्रण की मान्यता की भी मांग की। विश्व दर्पण के लिए मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्यजनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। यानिक सिनर ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रोम में कल फाइनल में सिनर ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-4, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ सिनर 1976 में एड्रियानो पनाटा के बाद ये टूर्नामेंट जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। ईरान द्वारा अमरीका की प्रमुख शर्तों को मानने से इंकार करने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जिनेवा में 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को दिशा देने पर वैश्विक संवाद में शामिल होंगे और विश्व

शुरू हो गया है दिल का मेल बॉक्स। नीतू है आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये जो पहला गाना है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, किशोर कुमार की आवाज में सिंपल सा म्यूजिक, शांत सा माहौल, और फिल्म भी उतनी ही प्यारी। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, इन सब ने सुनना चाहा है ये गाना फिल्म अमर प्रेम से।

0: कितना खूबसूरत गाना था ना।
1: बिल्कुल, इतने खूबसूरत गाने हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि एक के बाद एक बस सुनते चले जाएं तो दिल ही नहीं बढ़ता है। अगला गाना जो आ रहा है उसकी फरमाइश बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो fmgold@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी, आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुँचा सकते हैं। अगला गाना है अर्पण फिल्म से, प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली की पसंद का। इनके अलावा शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू, डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, इसके अलावा श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, RSB अंसारी और आसमा खातून अंसारी, ये सब भी एक गाना सुनना चाहते हैं तो आप सबकी पसंद

ऐसा आप अपने सपनों के लिए भी बोलते हैं क्या? नहीं ना, जब जो चीज से अगर आपको प्यार है तो आप उसके पीछे हाथ धो के लग ही जाते हैं ना, और यही प्यार होता है, वो चाहे आपके अपने सपनों से हो, अपने लक्ष्यों से हो, किसी भी चीज से हो। और इस गाने की जो फरमाइश की थी वो चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, इन सब ने की थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं दिल का मेल बॉक्स में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, इनकी फरमाइश पर ये गाना आपने सुना आकाशदीप फिल्म से। इनके अलावा कल्पना लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता भी ये गाना सुनना चाहते थे। अब जो गाना आ रहा है वो बहुत ही मशहूर फिल्म का गाना है, क्लासिक फिल्म है वक्त। इतने सारे कैरेक्टर उसमें हैं, इतने सारे स्टार्स हैं, तो और उस फिल्म की कहानी भी ना बड़ी ही मजेदार है। आपने अगर नहीं देखी है ना तो बिल्कुल देखिएगा। धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा की फरमाइश पर वक्त फिल्म का ये गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ, जो कि शर्मिला टैगोर और शशि कपूर पर पिक्चराइज्ड है, नाव के अंदर।

0: करे।
1: देखिए धारों में मझधार तो होगी ही होगी, वो कहते हैं ना कि जब उसल में मुंह सर दिया तो मुसलों से क्या डरना, तो फिर यही इस गाने का जो लॉजिक है वो ये कहता है। अब इस प्रोग्राम का यानी दिल का मेल बॉक्स का आखिरी गाना सुनाने का समय हो गया है, तो आपको सुना देते हैं वो गाना नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की फरमाइश पर। साथ ही इस गाने को पसंद किया है सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना ने भी। तो आप सुनिए चोर मचाए शोर फिल्म का ये सुपर हिट सॉन्ग मैं चलती हूँ। आपसे मिलूंगी तस्वीर में, सुनीतू को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली।
1: दामोदर मेनोन सतीशन നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
0: രാജ്യപാൽ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലിക്കറിനെ നയ മന്ത്രിയോ ശപഥ ദിലായി। നയ സർക്കാർ മേ ഷാമിൽ വരിഷ്ഠ നേതാവും മേ പൂർവ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ രമേശ് ചെന്നിത്തല, വർത്തമാൻ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സന്നി ജോസഫ്, കെ മുരളീധരൻ ഓർ ഐ യു എം എൽ നേത പി കെ കുന്നാലിക്കുട്ടി ഷാമിൽ ഹെ। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक

शुरू हो गया है तस्वीर। नीतू है आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और आज हम जिस जगह की बात करेंगे ना, उसे एक जमाने में माचिस की डिब्बियों का शहर कहा जाता था और पेंशनर्स पैराडाइज भी, क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी से रिटायर होने के बाद यहाँ बसना चाहते थे। आज इसे सिटी ऑफ गार्डन्स और सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, जो कि वेल प्लान्ड है, सेक्टर्स में बटी है और बहुत साफ है। यहाँ की एक जगह का नाम जैसे ही मैं लूंगी ना, आप इस जगह को पहचान जाएंगे, रॉक गार्डन। जी हाँ, ये है चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की मिली जुली राजधानी और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। इसी की बातें करेंगे आज आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर में।

हिमालय की शिवालिक रेंज की तलहटी में बसा चंडीगढ़ बहुत पुराना शहर बिल्कुल नहीं है। पहले पंजाब की राजधानी हुआ करती थी लाहौर, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया, तो अपने पंजाब के लिए नई राजधानी की तलाश शुरू हुई और तब एक नए शहर की परिकल्पना की गई। योजना और डिजाइन का काम शुरू किया अमेरिकी आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर ने, लेकिन जब उनके एक साथी की मौत हो गई तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। फिर इस काम को अंजाम दिया फ्रेंच आर्किटेक्ट कॉर्बुसियर ने। अक्टूबर 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ का उद्घाटन किया। जब इस शहर को बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था तो ऐसे कई अवशेष मिले जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा स्थलों की खुदाई में पाए गए अवशेषों से काफी हद तक मिलते जुलते थे। इससे ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शायद यहाँ तक फैली हुई थी। फिलहाल तो यहाँ पंजाबी कल्चर फैला हुआ है और हमारे प्रोग्राम में भी पंजाबी सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अगला गाना नया दौर फिल्म से।

0: चंडीगढ़ का मतलब है चंडी का गढ़, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पास के गांव में माँ चंडी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है और एक पुराना किला, इन दोनों को मिलाकर बना चंडीगढ़। चंडी मंदिर के अलावा माता जयंती मंदिर, शीतला माता मंदिर, माता बसंती मंदिर भी यहाँ पर है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर मन्नी माजरा में है, मनसा देवी मंदिर। मन्नी माजरा में दो ऐतिहासिक मस्जिदें भी देखी जा सकती हैं। तो चंडीगढ़ जब जाएं तो इन सब बातों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल मैं एक ब्रेक पर जा रही हूँ।
1: विकसित

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी FM गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप और बातें हो रही हैं चंडीगढ़ की। ये नाम आते ही ना नेकचंद जी का बना हुआ रॉक गार्डन याद आ जाता है, जो उस समय अपनी तरह का अनूठा प्रयास था। आज तो आपको बहुत सारे ऐसे गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग शहरों में, दिल्ली में भी हैं कई, मगर जब नेकचंद जी ने इसे बनाया था तो ये चंडीगढ़ की पहचान बन गया था। लंग्स ऑफ चंडीगढ़ के नाम से जानी जाती है लेजर वैली, जो पार्कों और बागीचों की एक श्रृंखला है। सेक्टर 1 से शुरू होकर ये सेक्टर 53 पर खत्म होती है, जिसमें कुल 12 पार्क और उद्यान हैं। इनमें राजेंद्र पार्क, रोज गार्डन, टोपियारी पार्क, टेरेस गार्डन, फिटनेस ट्रेल्स, शांति कुंज, बोटानिकल गार्डन, हिबिस्कस गार्डन और स्मृति उपवन शामिल हैं। जाकिर हुसैन रोज गार्डन में आप 1600 से ज्यादा किस्म के गुलाब के फूल देख सकते हैं। शांति कुंज में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की बड़ी मात्रा पाई जाती है। टेरेस गार्डन में अपने म्यूजिकल फाउंटेन की वजह से मशहूर है, जो शाम के समय जगमगाता है और संगीत की धुन पर चलता है। इनके अलावा जापानीज गार्डन, गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस और गार्डन ऑफ पाम्स भी देखने लायक है।
2: उसका जवाब शस्त्र देना। टन
3: टन
2: टन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मी की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: है,
1: तुमको मुझसे प्यार है।
2: चंडीगढ़ में दो मशहूर झीलें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, सुखना और ढांसा। सुखना झील में कई तरह की बतख और गिल्स परमानेंटली देखी जा सकती हैं और सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षी जो हैं वो यहाँ आकर डेरा डाल लेते हैं। सुखना झील से ही जुड़ा है सुखना वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पर आपको बहुत सारे जीव जंतु पंछी देखने को मिल जाते हैं, जानवरों पंछियों और पेड़ पौधों और दूसरी कई वन पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए इसे 1998 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 2006 में बना सिटी फॉरेस्ट पार्क भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप नीम पीपल शीशम जैसे पेड़ों के अलावा देख पाएंगे तरह तरह के पक्षी। वैसे अगर आपको तोते पसंद हैं तो आप तोता पक्षी अभयारण्य जा सकते हैं, जिसे सिटी बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में रंग बिरंगे तोते हैं जो कहीं झुंड में बैठे हुए, कहीं उड़ते हुए आपको दिख जाएंगे तो कहीं बतियाते हुए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

स्वादशिमला वेक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ। आप सुन रहे हैं तस्वीर और आज बात हो रही है चंडीगढ़ की। और मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ शहर की जब परिकल्पना की गई तो उसकी योजना का काम दिया गया ली कार्बूसियर को। उन्होंने सिर्फ योजना ही नहीं बनाई बल्कि कई स्मारक भी दिए चंडीगढ़ को, जिन्हें चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स के 100 एकड़ के विशाल परिसर में देखा जा सकता है। इस पूरे परिसर को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। इस परिसर में पैलेस ऑफ असेंबली, सचिवालय भवन, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय और एक झील के अलावा है 4 स्मारक। पंजाब विभाजन के शहीदों को समर्पित शहीद स्मारक, प्रसिद्ध ओपन हैंड स्मारक टावर ऑफ शैडोज और जियोमेट्रिक हिल। ओपन हैंड स्मारक शांति, एकता और खुलेपन का सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। टावर ऑफ शैडोज को सौर गति का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें टावर के अंदर और बाहर दोनों तरफ पड़ने वाली छायाओं का उपयोग करके सूर्य के मार्ग का पता लगाया गया था। जियोमेट्रिक हिल को पास की विधानसभा की बिल्डिंग को छुपाने के लिए बनाया गया था और ये पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन वेस्ट से बना है। टीले के आकार के इस मॉन्यूमेंट के आसपास कुछ कलाकृतियां भी देखी जा सकती है। तो जब भी आप चंडीगढ़ जाएं तो इस परिसर को जरूर देखें, जो कि मैंने आपको बताया था क्या नाम है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स।

0: इसी तरह का जो मिजाज है ना वो आपको मिलेगा जब चंडीगढ़ में मेगा कार्निवल जब आयोजित होता है और आप वहां जाएंगे। तो ये होता है हर साल नवंबर के आखिर में, और इसमें अलग अलग तरह की गतिविधियों के साथ साथ बहुत तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मानसून में सुखना झील के आसपास आयोजित किया जाता है मैंगो फेस्टिवल, जहां आम की ढेरों वेराइटीज आपको देखने को मिलेंगी, और आम अब तो ज्यादातर लोगों को पसंद आता ही है। इसके अलावा नवरात्रि, लोहड़ी, वसंत, बैसाखी, मतलब सभी त्योहार जो है वो बहुत धूमधाम से पंजाब में मनाए जाते हैं, और ऐसा ही त्योहारों वाला, मेले वाला फील लेकर आ रहा है ये अगला गाना पवित्र पापी फिल्म से।
1: लेते सैया ओढ़नी, हो लेते सैया।

0: हमें क्या सोचेंगे?
1: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बारिश मग्गे चल।

आ गया ना त्योहारों वाला फील भी आपको। शहरीकरण की चकाचौंध होते हुए भी ना चंडीगढ़ जो है वो संस्कृति से सभ्यता से भरपूर है और इस तरह का फील ना आपको वहां मिलेगा। और साथ ही साथ आपको हरियाली भी हर तरफ नजर आएगी, जंगल से घिरा है, बरगद नीलगिरी के पेड़ हर जगह आपको दिखाई दे जाएंगे। और शायद यही वजह है कि चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति वाहनों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, फिर भी यहाँ की आबो हवा साफ सुथरी है। हाँ, ट्रैफिक पिछले कुछ सालों के मुकाबले बढ़ा है, पर अभी भी मेट्रो सिटीज से बेहतर है। चंडीगढ़ में शॉपिंग करनी हो तो सेक्टर 17 और सेक्टर 22 में कमर्शियल मार्केट्स हैं, जहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं, फुलकारी आइटम्स, पंजाबी जूतियाँ शास्त्री मार्केट से खरीद सकते हैं। वैसे चंडीगढ़ ड्राई फ्रूट्स के लिए भी मशहूर है और पंजाब में है तो हर तरह के पंजाबी फूड आइटम्स का स्वाद तो आप यहाँ ले ही सकते हैं। अभी तो आप आनंद उठाइए इसी तरह की छेड़छाड़ का।

डॉक्टर ऋचा सूद सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और चंडीगढ़ की आज हमने बातें की हैं और अब आपका दिल में अगर आ रहा है कि चंडीगढ़ जाना ही है तो फिर अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम सबसे बेस्ट है चंडीगढ़ घूमने के लिए। अगर आप हवाई मार्ग से जाते हैं यानी कि एरोप्लेन लेते हैं, फ्लाइट लेते हैं, तो चंडीगढ़ में है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शहर से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से जाना चाहें तो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, केरल और चेन्नई से चंडीगढ़ तक सीधी रेल सेवा है। हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली से सड़क परिवहन निगम की बसें भी चलती हैं, तो आप चाहें तो लग्जरी बसों से भी चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं या फिर अपनी कार में, जैसा कि ज्यादातर दिल्ली वाले करते हैं, कार उठाई और किसी भी वीकेंड पर चंडीगढ़ पहुंच गए। आप चाहें तो लंबी छुट्टियों में, चाहें तो वीकेंड पर जा सकते हैं। तो आज का चंडीगढ़ तक का सफर तस्वीर यहीं तक। अब नीतू चलती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आपके लिए एक और खूबसूरत सा गाना मैं आज छोड़े जा रही हूँ, आप उसका आनंद उठाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

फिल में लुई डिग्री में नंगा कसता हम किसी से कम नहीं फिल्म में लू आशा भोसले तंग मोहम्मद रफी ने सनजत लूट सुमकन मजरू सुल्तानपुरी यंग लुयंग श्रीकन राहुल देव बर्मन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दक्षिणी जरंगे मोहम्मद रफ़ी ने फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म लू सनजज लूर सुमकन इन पिन मजरू सुल्तानपुरी यंग लू यंग स्टिकन ओपी नयर फिल्म लुई डिग्री में नंगा कसता लता मंगेशकर तंग ठोपा गुन्ने मिली फिल्म लू सनजत लूर सुमकन योगेश यंग लू यंग स्टिकन एस डी बर्मन

फिल्मी लुई टिक्री मिनंगा कसता लता मंगेशकर ने चुपके चुपके फिल्मी लु सनजत लूर सुमकन आनंद बख्शी यंग लुयंग श्रीकन एस डी बर्मन।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट।

0: तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
0: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
0: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
1: जी,
0: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट?
4: आई लाइक प्लेइंग सर।
6: आई लाइक पेंटिंग सर।
2: वेरी गुड, एनीवन एल्स?
7: सर, आई लाइक सिंगिंग।
8: आई लाइक प्लेइंग विद माय पेट्स।
2: ओह, दैट्स ग्रेट। नाउ टेल मी, Do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
6: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes,

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordinator, Butty Lang Lingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
0: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
0: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
13: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।

0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाईं।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है। क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से बढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना?
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।

0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: दक्षिणी जरंगे NCERT चिंदक जतकने डिग्रीम उमंग सनजज दिरिंगी जरंगे ये डिग्री में खाक अस्तोंचिक नंग निप्या गया चुके रुपा सनजज नजे आकाशवाणी लेने जुएंजिक तंगीन।

0: ngaji akashwani lene jun jik tang en ngime chuzo jik chaduk kasata akashwani delhi ne hindi tang angrezi nang na sul sana ja
1: akashwani samachar ke sath main jagriti sharma प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और पांच नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026 to 2030.

जय हिंद फौजी भाइयों, इस वक्त के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए टू स्टेट्स फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह और चिन्मय की आवाज़ों में, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए अगला गीत सुनिए, एजेंट विनोद फिल्म से हमसिका और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत अमल मलिक और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में एयरलिफ्ट फिल्म से, गीतकार कुमार और संगीतकार अमल मलिक।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में, कुर्बान फिल्म से। गीतकार निरंजन अयंगर और संगीतकार सलीम सुलेमान।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ों में डेली सिक्स फिल्म से गीत। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीतकार ए.आर. रहमान। लीजिए अगला गीत सुनिए, तेरे नाम फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक और समीर की आवाज़ों में। गीतकार समीर और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में, गीतकार समीर और संगीतकार जतिन ललित।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म गीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

0: ngaji akashwani le ne jwin jik tangin ni me chu so chik tang skar mang ap chu chadu ka sa ta akashwani delhi ne urdin ang nasul mid day news yang doper samachar sanajat
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गहर स्टोरे के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले पांच साल में दोतरफा तजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस के लीडर वी डी सतीशन को केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। 20 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इमरजेंसी की सूरत हाल में काम करने वाली 400 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन का दो दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे में भारत और नॉर्वे के दरमियान बाहमी बातचीत होगी, साथ ही तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे। जनाब मोदी के इस दौरे से नॉर्डिक मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को तकवियत मिलेगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे के अपने पहले दौरे पर ओस्लो पहुंच गए हैं। पिछले 43 वर्ष में भारत के किसी भी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा है। जनाब मोदी आज नॉर्वे के शाह हारल्ड पंजुम और मलका सोंजना से मुलाकात करेंगे। नॉर्वे के वजीर आजम योनास गहर स्टोरेस के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीक समिट से भी खिताब करेंगे। इस दौरे में माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और समुद्री मीशत जैसे शुबों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा तजारत सरमाकारी के मौाक़े को भी फ़रोग हासिल होने की तवक्को है। कल वजीर आजम तीसरी भारत नॉर्डिक सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हाल ही में नाफिज किए गए तजारती और इकतदारी शराकत दारी माहदे के तनाजुर में तवक्को की जा रही है कि सरबरा कॉन्फ्रेंस रुकन मुल्कों के साथ इकतदारी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहक करने में मददगार साबित होगी। सरहद भारत और पांच नॉर्डिक ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत 19 अरब डॉलर मालियत की है। नॉर्वे के ओस्लो से संगीता गोडबुले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि स्वीडन के उनके दौरे में ऐसे कई अहम नतायज सामने आए हैं जिनसे बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह तक पहुंचाने से लेकर मुश्तरका इख्तराई साझेदारी के दूसरे मरहले के आगाज और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत कॉरिडोर से लेकर अगले पांच साल में दो तरफा तजारत को दोगुना करने का बड़ा मकसद तय करना उनके दौरे की के खास निकात रहे और बातचीत काफी मुफीद साबित हुई। जनाब मोदी ने स्वीडन के आवाम, वहां की सरकार और वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन का गर्मजोशी और दोस्ती के लिए शुक्रिया अदा किया। हमारे नामनिगार ने बताया है कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने में 2026 से 2030 तक के भारत स्वीडन मुश्तरका अमली मंसूबे का अहम रोल रहा। जामे खाके का मकसद अगले पांच साल में दो तरफा इकतसादी लेन देन को दोगुना करना और मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि भारत आज सरमायाकारी इख्तिरा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के सबसे पुरकशिश मुल्कों में से एक है। जनाब मोदी स्वीडन के अपने दो दिन के दौरे में गोथेनबर्ग में सनअत से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि मुल्क में सभी कंपनियों के लिए अच्छे मौके दस्तियाब हैं। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले बरसों में भारत के सरकर्दा प्रोजेक्टों का हिस्सा बनने के लिए उनके वास्ते एक इदारा जाती निज़ाम समेत मुख्तलिफ इकदामात भी किए जा सकते हैं। अपने खिताब में जनाब मोदी ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारत के तारीखी समझौते के मुदाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल होने समेत भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में तेजी आने का खैर मकदम किया। केरलम में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर वीडी सतीशन की सरबराही में नई यूडीएफ वजारत को आज तिरुवनंतपुरम में हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। साबिक अपोजिशन लीडर और केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के साबिक सदस्य रमेश निथाला, केपीसीसी के मौजूदा सदर सनी जोसेफ, केपीसीसी के साबिक सदर के मुरलीधरन और आईयूएमएल के लीडर पीके कुनाहली कुट्टी नई वजारत में सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल हैं। मजमूई तौर पर 21 अरकान को हलफ दिलाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर वीडी सतीशन को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार अवाम की उमंगों की तकमील में केरलम की नई तश्कील शुदा सरकार की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएगी। मगरबी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की जेर क्यादत बीजेपी सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए रियासती सरकार की मुलाजमत में आने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में इजाफा कर दिया है। ग्रुप ए असामियों में भर्ती के लिए उम्र की हद अब 41 साल तय की गई है, जबकि ग्रुप बी के ओहदों के लिए इसे बढ़ाकर 44 साल कर दिया गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी असामियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र अब 45 साल होगी। सरकार ने ये वजाहत की है कि जहां कहीं उम्र की बालाई हद पहले ही नाफिज है वहां मौजूदा जाब्ते बरकरार रहेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज रायपुर में अगले सिलसिले की 400 डायल 112 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर आला विष्णुदेव साई, रियासती असम्बली के स्पीकर रमन सिंह और नायब वजीर आला विजय शर्मा भी मौजूद थे। अब तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में डायल 112 की खिदमत दस्तियाब थी। प्रोग्राम के बाद जनाब शाह बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वो नेतानार गांव में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स

0: trapped in a test of wills, waiting to see who blinks first to end the stalemate in the war in the region. In a social media post, President Trump said time is running out and called upon Tehran to move quickly towards an agreement. Meanwhile, Iranian media has reported that the U.S. fails to make any concrete concessions in its response to Tehran's latest proposals to end the conflict. In IPL cricket, hosts Chennai Super Kings will take on Sunrisers Hyderabad at M.H. Chidambaram Stadium. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are fifth with 12 points from as many matches, having registered 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiang Shan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovpreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing 5th in the men's 110kg-plus category. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्थिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए पहली जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु

0: क्रांतिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृतकाल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव किलोहर्ट्ज चिक्सतोंग अपचुंगा सुम यांगना मीटर्स निबिया गेचुकेबजी तंग चुजुरगु यांग एफ एम मेगा हर्ट्स ज्ञान चिक तंग चुजुर चिक कांगजे आकाशवाणी लेने जुन चिक तंग इन निमे चुजोत निस तंग पेचादु का सतांग निस तंग स्कर मांग अपचुंगा चुकपा लूरिक सनाजादिन इनांग अस्मोला सिरिंग टुंडुबे सलकाने लू सनाजाद

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इपू आकाशवाणी ले इन कस्यांगचन टोलमा न नाचुल सनाजात शिलो नरेंद्र मोदी नॉर्वे जिसको लालप्योते नोक्ते रुखोंग इस इंडिया नॉर्डिक समिट नंगा थुशेस माचात युले उश्कुंग गुंतांग यम पो जलम जाचे सनोक नॉर्वे नंगा शिलो नरेंद्र मोदी जिसको तंगपो रंगजा दिन जिकतानो यंग ग्यागारे शिलो जिगे जिसको लो जिपचु जक्सु मिनांगा गोमा रंगस्कु जब मोदी जादिन जिकतानो जिसको रिंगदा युल निस्के पाला शुक्स लक्ष्म Songdel Zotapstang, Nya Shalkyong Gute Gunur Paljori Nanga, Yergastang Chesi Toga, Nyamrox Las Guzukta Chesi Reva Chenjiktang Enok. Turokispe Laskungi Karu Magmisto Nasika Ki Guniske Gogak Chestang Anti Rebis Las Guljik Melde Chukshik Ne Chubji Tsupashul Tenok Itus Doctor Tang Turokispe Laskungi Laschet Paguni Shanki Yanasum Chusokshiga Anti Rebis Tang Stenok Yanske Gogak Chesi Las Gurshul Tenok. Mistis Niston Nishu Sabdun, Ladakh Senanga Zatchespo, Ladakh Senanga Ujungade, Gurte Tangpo Rangzad in Jiktanok, Ladakh Senses is Ponbo Chenmo, Amit Sharma Shadazars.
1: यूटी बनने के बाद एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार अपना इंडिपेंडेंट सेंसस करवाने जा रही है हिस्टोरिकल और उसके साथ साथ दूसरा हिस्टोरिकल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने तो ऐसे तो काफी एमओयूज किए हैं पर ये एमओयू साइन करके भारत सरकार के साथ पार्टनरशिप में आ गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेडीमेड डेटाबेस रहेगा सेंसस ऑफ इंडिया की तरफ से 2027 सेंसस का जैसे ही सेंसस का कंक्लूजन होता है तो ये उसके बाद डेटा जब प्रोसेसिंग होगा लाइव अवेलेबल रहेगा और बड़ी बात ये भी मैं साथ साथ बताना चाहूंगा कि लद्दाख भारत की पहला स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसका सेंसस सितंबर 26 में फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा
0: Mrs. Nistung Nishu Sabdun Kaktang Pena, Rang Raiming To Chukches La Porter Guzuk Zatsar Te Zongspon Roman Singh Dongi, Mimans Kuni Mail De Tsis Chubdun Nisun Chusok Shik Tsukpa, Online Nika Official Website se.census.gov.in Nika Kangches La Jua Pula Zats.
2: आज जैसे कि डायरेक्टर सेंसस हमारे जेकेएल के आए और उन्होंने आज सुबह हमारे ऑनरेबल एलजी को सेल्फ इन्यूमरेट कराया तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आज से सेल्फ इन्यूमरेशन का जो पोर्टल है se.census.gov.in वो चालू हो चुका है इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार अपने घर बैठे अपने सारे डिटेल्स भर सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट एक आदमी को लगेगा तो उस हिसाब से आप आज

0: आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

0: Yönüm tang pena thoring a tochu so don tang skarma sum chu sok ni seka odzer don tang skarma sum chu sok doni ka nga jeri grim kune skor don tang skarma jip chu jak ni seka tapa nang jene de grim ena smol la tsiring ang dos tang smol la tsiring guni pulkane sungur zara bano tang thopa guni pulkane na te sherif yang ting ju peka sewang dol ma tang thopa guni pulkane choslo sana zadin gyadeka akashmane deli ne samachar prabhat tang morning news gyatang pedika Sering chundom tang thopa guni salkane junglori thore nga to chuto urgu ka ladak sana nasul gunaskar mash nge ka chepe de lasne skor la nasul gunaskar mash chuka sering dol me salkane lorik sana jabe guna phetne chu chu pa filme lori nang thore nga to chuto chune nge me chuto chungi supa fm gold and daily sana jabe nge me chuto chungi se ka filme lori chungi na phede ka ncert chindak tat kane degree omang sana jabe chige ka akashwani deli ne hindi tang angrezena na sulgun chik tang skarma chu ka magmi ka to degree mena filme lori chik tang skarma ngap chu ka akashwani deli ne urdina na sul ngise ka midday news ngis nas karma chu ka dopahar samachar sana tadin ngis na phede ka smol las kal dang lamo yang testing ne tering urup tang tering ang chu kun sal kane jung lori sana tadin yang thoring ngi mi chu to ngis nas karma ngap chu ngai ka ladak sana na sul sanchas da phelin degrim gispena thore phito chu tur nge ka lada sana nasul ganas ka mash nge ka phone in program hello julia sana ta din thore se degrim pul kan mi pam do she ganas ka mangap chu nga ka nga je degrim gune skor tu ge ka akash mane delhi ne hindi ta angre sana nasul gun tu ta skar mash chu ka jing pe sun skat degrim sanchas ta pulin thore se degrim ena smula tamdil skal zang la mesal kanilu yana degrim ena skushaps Shira bang motanya po tiwatilan sana tadin. Torese degrim pulkan hasena banu yang degrim eko diksatkan suna macu. Duk taskar ma jip juga magmi kato degrim ena filmi lorik. Dun taskar ma chong eka ladak sana na sultan bilcha. Dun tang pedeka mingyur wang pesal kane lorik sana tadin. Torese hane chusut gya deka junu guni fia degrim sanchez la pulin. Torese degrim pulkan gun sunam dolma tang riksin nang mo yang degrim eko diksatkan lopsang nam gel. Gyatang pedeka sunam rulma tang thopa guni salkane loglorik. Gyatang skarma jipchu jangne gunang petsukpa. Akashwane delene samacha sandhya news at 9 yang testingne urdina nasulgun. Yang thore sani chutot gunang pedeka rolka lamo tang thopa guni salkane junglorik sana tatin. Kasata gunin pin ngashi diring tang thore sari krim gune skor gun. Ngashi akashwane leni shot kasata akashwane delene hindi tang angrezena nasulgun sana tat.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गॉरस्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की जो स्वच्छ ऊर्जा नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है
2: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे
1: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश चक्रीय अर्थव्यवस्था नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों विशेष रूप से व्यापार प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ndax sangi sangi gamul pes kan lon de grim sarazat de grim ful kan in pin tin less than the yang de grim e kotik sat kan in pin sona ma chok nga she akashwani leni shot medium wave 284 ashronometer yani 1053 kilohertz aur fm 101.1 megahertz par hum akashwani le se bol rahe hain लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं बोल बच्चन फिल्म का गीत हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। शबीर अहमद के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अभी आप सुन रहे थे नेताली फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और शान की आवाज़ों में। लीजिए अब सुनिए धूम 3 फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission. Information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat.
1: फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दिल धड़कने दो फिल्म का गीत इशिता शर्मा और साथियों की आवाज़ों में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आप गुरु फिल्म का गीत सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज़ में। लीजिए आप कार्यक्रम के आखिर में सुनिए बंटी और बबली फिल्म का गीत उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: Kakuni nanga ngulzot kanga jab toktan po choche la kaspel tenok. Mrs. Nistong isho sabtun kaktang po ladak se nanga dang na pala kuzuk song tenok. Uju nga de gyur te sting ne Mrs. Nistong isho sabtun tang po rang talik zaten jik tanok. Changtang e kargami nanga zami shil dani demton e jaga sidus gamil paguni rok se ka nomadic museum zat kan po zongspo nitish rajori kuzuk stendel zat tenok. Kasata natsul kun jipsal tangyam po sana zat. Ujungade dane ngulzot kanga tsokspe tsoksa zatus, tongshi ashis kundre iladakse ngulzot kanguni, ngistong ishu sange December dane, ngistong ishu sarugi March sukpa, chaklas kulna zikstoklena zatenok, itu shada zatkan nangjin, ngistong ishu sarugi March ilda sukpa, credit deposit ratio gyatok ne jipchu jaruk tang chuzur tuklus tenok. Skujab ashis kundre ngulzat kang miksal zate, geri ngulzat kang kaguni credit ratio gyatok ne jipchu asang nyung ayot, te gun la ma nga la sirshul chichez la kaspel tenok. Kongis ngulzat kang tang delur las kung gun la financial inclusion ma nga choches tang credit flow ma nga choches la ha gospel ches la kaspel tenok. Yang ngulzat kang changma la takring si yul miksal zate vibrant village kuni nanga ngulzot kanga dani zo ayer gas tang ches tang ngulzot kanga yanlak pheches atm italik ja ches tang business correspondent ja ches lang motte nok ngime nanga jung lopta kanga chas par te ladak moral school ja te yot kan bo ujung aze lopte yon ta ni tong e banu parbe ja te nok kuzuk tendele jat ko sting ne yon ta ni tong e gis lopte nangal dani zo ja te yot kan gulna zik sa ja te nok yang gergan pama tangamul pagulna gamule yonta ni cirkaltan pochochi sina chagla jatkan bolto jatenok yangkhong is pustak tang pustak yontan tang nyapo sherik tang yarap chojang rin tang yongchis khakchan school la shetsal tenok Tudo gispel laskung is kharui magmi sona sika ki gunis kego kakches tang anti rabies ilas guljik shulte melde ches chukshik ne jubji chok pasul tenok itu doctor guntang tudo gispel laskung ilas chet paguni shankir gana sumchu sokshiga anti rabies tang senok yang kego kakches se shakcho dilas gushul tenok mistis mistong ishu sabdun ladakh sena jachiz la ladakh sena nga ujung nga de gurte tang porang jadin jik tanok ladakh se senses is ponbo amish sharma shada
1: यूटी बनने के बाद एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार अपना इंडिपेंडेंट सेंसस करवाने जा रही है हिस्टोरिकल और उसके साथ साथ दूसरा हिस्टोरिकल ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने तो ऐसे तो काफी एमओयूज किए हैं पर ये एमओयू साइन करके भारत सरकार के साथ पार्टनरशिप में आ गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेडीमेड डेटाबेस रहेगा सेंसस ऑफ इंडिया की तरफ से 2027 सेंसस का जैसे ही सेंसस का कंक्लूजन होता है तो ये उसके बाद डेटा जब प्रोसेसिंग होगा लाइव अवेलेबल रहेगा और बड़ी बात ये भी मैं साथ साथ बताना चाहूंगा कि लद्दाख भारत की पहला स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसका सेंसस सितंबर 26 में फुली कंप्लीट हो जाएगा
0: Mrs. Nistong Nishu Sabdo ne kaktang pe nanga rangra ming to chukches la portal kuzuk zat sarte Zongspon Romil Singh Dong is mimangz guni mail de ches chubtu ne sumchu sokshik chukpa online ka official website se.census.gov.in ikar kang ches la yopula zat.
2: जैसे कि डायरेक्टर सेंसस हमारे जेकेएल के आए और उन्होंने हमारे ऑनरेबल एलजी को सेल्फ इन्यूमरेट कराया तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि ये सेल्फ इन्यूमरेशन का जो पोर्टल है se.census.gov.in वो चालू हो चुका है इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार अपने घर बैठे अपने सारे डिटेल्स भर सकते हैं जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट एक आदमी को लगेगा तो उस हिसाब से आप आज से सेल्फ इन्यूमरेशन चालू कर सकते हैं इससे एक तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आती है क्योंकि आप खुद भर रहे हैं उस सारी डिटेल्स को और इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं तो मैं अपनी सारी जितनी भी सेंसस की टीम है अपनी प्लानिंग अपने सीपीओ साहब अपने जितने भी डायरेक्टर सेंसस की तरफ से जितने भी लोग आए उनको बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये पूरे जिले में पूरे हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट में ये एक सफलतापूर्वक सेल्फ इन्यूमरेशन भी और बाकी का सेंसस का काम भी प्रोसेस पूरी अच्छे स्मूथली चल पाएगा और मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये आगे भी अच्छे से काम करते
0: Skoryang da yergis tangchi simigji tangyam po ladak sina mail de ches nishu ne nishu saruk tsokpa astrophic juste skarsok da zikshe se digrim jik talik za chese nok ibor gyote astronomy skoryang da yergis tangchi la talik na tsokshik astronomers takchat zatkan tang skoryang spaguni per

0: लास्ट में वो रिटेन कर लीजिए, जब हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर आपके घरों में आएंगे तो आप उनको वो अपनी SC ID दीजिए, वो उसको काउंटर कंफर्म कर लेंगे और उसके थ्रू आप इजिली अपना डेटा रख सकते हैं। काउंटर वेरिफिकेशन के बाद ये हमारे सर्वर्स में फ्रीज हो जाएगा। और लास्टली इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सेंसस के नाम पे बहुत ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स और साइबर फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये 100% डिजिटल फॉर्मेट में पहली बार भारत में सेंसस होने जा रहा है। तो प्लीज बी वेयर, हमारा सेंसस डिपार्टमेंट किसी से कोई भी डिटेल नहीं मांगता, चाहे वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, चाहे वो आधार है, चाहे पैन है, चाहे क्रेडिट कार्ड नंबर है। और प्लीज अगर इसके नाम पर आपको कोई कॉल करता है या थ्रू वेबसाइट्स कोई बात करता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए, हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इवन हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर आएंगे आपके घरों में तो उनका प्रॉपर ID चेक कीजिए और QR कोड रहता है उससे आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है, सिर्फ उन्हीं लोगों से वो 33 सवाल जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में HLO में है सिर्फ उन्हीं का उत्तर दीजिए। या तो आप स्वगणना SC में दे दीजिए या जब वो घर आएंगे तो उनको पूरा अपना डेटाबेस दे दीजिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि लद्दाख में बहुत अच्छा सेंसस बढ़िया तरीके से डेटाबेस बनेगा जो आने वाले समय में भारत की प्रगति विकास और खासकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की विकास का मूलभूत आधार बनेगा। तो और हम कुशवाहा साहब और इनकी टीम को भी यही कहेंगे कि इन वर्क स्टेशन के द्वारा आने वाले समय में लद्दाख की प्रगति और विकास में अपने योगदान और निरंतर जो आपका एक लक्ष्य है लद्दाख को आगे ले जाने का उसमें कार्यरत रहिए। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी लेने ता दिलशद थोन
2: ngaji akashwani lenishat kasata chutot lundans karma jip chutupa tuje dolme salkani ilugun sanazat

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit samriddh Bharat.

0: dakseng jang e thukje dul mesal kane lurik sana jas ngache akashwani leni chwet ka sada akashwani srinagar ne urdena na sultang tapsara sana jat
1: ye dekh kaise
2: happy birthday bhai
1: dikha aa mera favorite color
2: hamesha shopping
3: I know ma but kharcha karne ki bhi yahi umar hai right
4: saving karne ki bhi yahi umar hai
5: I know pa सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: कश्मीर की जानिब से एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। एडवाइजरी के रूप से श्रीनगर, काकापुरा और पांपोर से आने वाली गाड़ियों को ओल्ड सर्कुलर रोड से शुपया और लेतर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से नौगाम और निवा जैसे इलाकों से आने वाली गाड़ियों को नए सर्कुलर रोड से मुरन, केलर राजपुरा और शुपया की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तहम शुपया से श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों को इन दोनों सड़कों से आगे बढ़ने की इजाजत होगी। जिला अस्पताल की तरफ से जाने वाली मेडिकल इमरजेंसी की गाड़ियों को मुरन चौक से चलने की इजाजत होगी। इधर पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत अपनी सरगर्मियां जारी रखते हुए आज अवंतीपुरा में कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद करके स्कूली तलबा और नौजवानों पर जोर दिया कि वो नशाखोरी की लत से बचें और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करें। हंदवाड़ा पुलिस ने दो अलग अलग कार्रवाई में अल्ताफ अहमद मीर और निसार अहमद अहंगर नामी दो मनशात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। उधर अनंतनाग पुलिस ने अपनी मनशात मुखालिफ कार्रवाइयां जारी रखते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 1,10,00,000 रुपये मालियत की जायदाद मुंसलिक कर दी है। मुंसलिक की गई जायदाद में मनशात फरोश एजाज अहमद भट्ट का दो मंजिला रिहायशी मकान शामिल है। इसी असला में बड़गाम पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत बड़गाम में खशखाश की फसल को तबाह करते हुए इस ताल्लुक से दो FIR दर्ज किए हैं। शुपया में पुलिस ने मनशात के मुजर असरात के ताल्लुक से एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया। उधर जिले के केलर इलाके में पुलिस ने खशखाश की फसल को तबाह करते हुए एक FIR दर्ज की। अनंतनाग और हंदवाड़ा में भी अलग अलग कार्रवाई में पुलिस ने खशखाश की फसल को तबाह कर दिया। पुंछ पुलिस ने भी एक कार्रवाई के दौरान एक मनशात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चरस की कुछ मिकदार बरामद की। सांबा पुलिस ने मनशात मुखालिफ एक कार्रवाई के दौरान बलोल खड बरी ब्रह्मा में मनशात का कारोबार करने वालों की जायदादें मुनहदिम करने के अलावा 60 करोड़ रुपए मालियत की जेर कब्जा सरकारी अराजी को आजाद कराया है। रियासी पुलिस ने मनशात मुखालिफ एक कार्रवाई के दौरान मोहम्मद मकबूल नामी एक मनशात फरोश से 50 ग्राम हेरोइन जब्त की। पूरे जम्मू कश्मीर में कल से सेंसस 2027 का सरकारी तौर पर आगाज हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन मुकम्मल करके जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो इस अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने घरों से मुतलिक तफासील ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं। उन्होंने सेल्फ इन्यूमरेशन को एक बड़ी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा,
1: जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहता हूं कि जनगणना आपके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए आवश्यक है। आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अपने मकान और उसमें रहने वाले कितने परिवार के सदस्य हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी जनगणना से जुड़े हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीजिए। मुझे लगता है कि आप सब इसमें पूरा सहयोग करेंगे।
0: दरअसल जम्मू कश्मीर के बेशतर जिलों में भी सेल्फ इन्यूमरेशन का अमल शुरू हुआ, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। आज दूसरे दिन भी मुतलका पोर्टल पर बहुत से लोगों ने अपने मकानात की तफासील दर्ज कराए। महकमा जरी पैदावार, देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने भी आज सेंसस 2027 के सिलसिले में अपना इंदराज कराया है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल तरीके से मर्दमशुमारी का एक काम बाअमल लाया जाना मुल्क के डिजिटल गवर्नेंस के फ्रेमवर्क का एक अहम संगे मील है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ज़िलहज का चांद नजर आ गया है और ईद उल अजहा 27 मई यानी बुधवार को मनाई जाएगी। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने अवाम को मुबारकबाद देते हुए आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: कल मौरख 17 मई मुताबिक 29 ज़िलहजा ज़िलहज्जा का चांद देखे जाने की इत्तला'आत मौसूल हुई। मुशावरत के बाद ये फैसला लिया गया कि आज 18 मई ज़िलहज्जा की पहली तारीख है और ईद उल अधा 27 मई को मनाई जाएगी। ईद को सादगी से मनाएं, गुरबा और मसाकीन का खास ख्याल रखा जाए, जानवरों की कुर्बानी करते वक्त माहौलियात का खास ख्याल रखा जाए।
0: यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबे कश्मीर के मजलिस आमला का एक इजलास श्रीनगर में मुनक़िद हुआ। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर मुश्ताक अहमद मीर ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए सरगर्म अमल है। प्रदेश बीजेपी सदर सत शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों की उमंगों के साथ धोखादेही करने का इल्जाम लगाया है। वो आज जम्मू में उनसे मिलने आए बेरोजगार नौजवानों की फरियाद सुनने के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। पार्टी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज पुंछ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मुनक़िद एक तरबियती कैंप से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कौमी तामीर के लिए बीजेपी का नजरियाती एतबार से मजबूत कैडर जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने आज प्रेमनाथ डोगरा

0: उनका दौरा करके कहा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा का नजरिया कौमी कुव्वतों के लिए आज भी तहरीक बख्श है। पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी अरुण शर्मा ने कहा कि बीजेपी अवामी शिकायत के इजाले और अवामी खिदमत के लिए पुरअज़म है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाही ने जम्मू कश्मीर में मुतादिद राबता सड़कों की खस्ताहाली पर बरहमी का इजहार करते हुए सड़कों के खराबशुदा बुनियादी ढांचे की फौरी तजदीद व मरम्मत करने पर जोर दिया है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वह इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका महकमों और अफसरों को मुतहरिक करे। टेली मवासलात का शोबा तरक्की याफ्ता दुनिया में एक अहम किरदार है। इस साल टेली मवासलात और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के आर्मी दिन के मौके पर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर श्रीनगर में भी एक शानदार तकरीब मुनाकिद हुई, जहां इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा मेहमान खसूसी थे। इस बारे में इदारे के चेयरमैन इंजीनियर फिरदौस अहद बट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: आपको पता है कि आजकल का दौर जो है ये फुली डिजिटल है। द कंप्यूटर लाइन हैज टेकन अस, आवर ऑफिसेज, आवर होम्स, एवरी सर्विस इज बीइंग नाउ रादर अफेक्टेड एज वेल एज ऑगमेंटेड बाय दीज डिजिटल लाइन। तो कल बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज से आए थे, एनआईटी से आए थे, एसएसएम से आए थे, फील्ड इंजीनियर्स आए थे, तो डिफरेंट रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स आए थे। तो डिलिब्रेशन में डिस्कशन हुआ कि जो थीम है डिजिटल लाइफ लाइन स्ट्रेंथनिंग रेजिलेंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, कि इसमें क्या असरअंदाज इंजीनियरों ने आज तक किया, क्या कर सकते हैं, क्या करना है। तो डिस्कस हुआ यही साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न आए हैं, डिजिटल दुनिया ने हमारा सुकून भी छीना, उससे भी बात हो गई, लेकिन साइमल्टेनियसली इसमें और कितनी जरूरत है कि ताकि हमारी ईज भी लाइफ बनाए, लेकिन हमारी लाइफ पे भी, हमारे सेहत पे भी असर ना कर सके। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सतीश शर्मा हु प्रेज्ड इंजीनियर्स, इंडस्ट्रीज ऑफ इंजीनियर्स एंड क्लियर कट बोर्ड दैट फॉरवर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वी विल गेट थ्रू इट, वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट व्हाट इज बेटर फॉर द सोसाइटी एज वेल एज द पीपल।
0: वादी में आज बुलंद पाए वली कामिल और कश्मीर में बानी इस्लाम हजरत सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह के 661वें उर्स के सिलसिले में अयामे मुतबरका का आगाज हो गया। तारीखी खानकाए मोहल्ला में बुक आलिया के सरपरस्त और मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने उर्स के सिलसिले में तमाम जरूरी इंतजाम करने की अपील की। इधर आज हजरत सैयद मोहम्मद अमीन वैसी मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीब अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। उनके आस्थान आलिया वाकया आली कदल श्रीनगर में एक मनकदा एक रूह परवर तकरीब में खत्मातुल मुअज्जमात और दुरूद अज़कार का अहतमाम रहा। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर राशिद फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हजरत सैयद मोहम्मद मंतकी वैसी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। फौज में भर्ती के लिए ऑनलाइन मुश्तरक दाखिला इम्तिहान इस साल 1 से 12 जून तक लिया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवारों ने ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के जरिए अपना इंदराज कराया है। मुतलका उम्मीदवार इसी पोर्टल से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी वजाहत के लिए आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर के साथ फोन नंबर 0194-2310164 या फिर ईमेल आईडी aro.srinagar123@gmail.com पर राबिता कायम किया जा सकता है। अदबी मरकज कमराज ने कश्मीरी जुबान और अदब के फरोग के मकसद से बेस्ट बुक अवार्ड 2025 का ऐलान किया है। यह अवार्ड तंजीम की सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर पेश किया जाएगा और इसके लिए इलाके कमराज यानी बारामुल्ला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा और गांधरबल अजला के अदीब और शायर अहल होंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज खड़वनी कुलगाम में पोल्ट्री से भरे एक ट्रक को हादसा पेश आने के नतीजे में 2000 के करीब ब्रॉयलर मुर्ग मर गए। हुकाम ने बताया है कि यह गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर हादसे का शिकार हो गई, अलबत्ता इसमें किसी फर्द के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। रेलवे के जम्मू डिवीजन की तरफ से 5 जून को मनाने वाले आलमी माहौलियात की मुनासिबत से 15 मई से ही जानकारी प्रोग्रामों के एक सिलसिले का आगाज किया गया है। इस सिलसिले के दौरान 5 जून तक माहौलियात और दायमी तरक्की के बारे में जानकारी पैदा की जाएगी। इसकी एक कड़ी के तहत आज एक खसूसी वर्कशॉप मुनाकिद किया गया, जिसमें जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन के मुलाजमीन और अफसरों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग कल सुबह 10:30 से 12 बजे तक फोन नंबर 0194-245-2019 पर होगी। गांधरबल में पुलिस ने रेत और बाजरी की गैर कानूनी निकासी में इस्तेमाल हो रही 8 गाड़ियां जब्त करके उनके मालिकान के खिलाफ केस दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के सूबे जम्मू में आजकल शदीद गर्म लहर है, जहां दिन का पारा 41 डिग्री तक पहुंच रहा है, जबकि कश्मीर वादी में खुश्क मौसमी सूरत हाल बनी हुई है। ताजा मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: वेदर थोड़ा सा पिछले एक दो दिनों से ड्राई रह रहा है और दर्जी हरत में भी थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। तो आज भी टेम्परेचर में थोड़ा सा राइज देखा गया है, 31 तक भी जो है टच कर सकता है यहाँ मैदानी इलाकों में वैली के अंदर। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के जो मैदानी इलाके हैं या कुछ एक जो एडजेसेंट प्लेन्स हैं, खासकर उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ के अंदर, रियासी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 38-39 से लेकर 41 डिग्री तक का भी राइज होगा। कल से जैसे थोड़ा सा वेदर भी एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा दर्जी हरत में भी गिरावट देखा जाएगा। थोड़ा सा वेट्स पर एक्सपेक्टेड है दोपहर के बाद, ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर एक्टिविटी विद हेल स्टॉर्म, गस्टी विंड्स के साथ साथ। तो ये सिलसिला कमिंग डेज में थोड़ा बाद दोपहर रहने के चांसेस हैं टिल 24th ऑफ मई तक। 26th ऑनवर्ड फिर से जो है ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तो
0: इस दौरान जम्मू में गर्मी की लोह से बचने के लिए आवाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तैनात डॉक्टर शाहिद हुसैन ने इस बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें और कोई फ्रूट, पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा जो उनके कपड़े पहनने का जो होगा वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, थोड़ी सी ना फायदा हो जाता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सके।
0: मौसम, महकमा मौसमात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलई आफ्ताब सुबह 5:27 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:28 पर होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नशर होगा। खुदा हाफिज।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन,
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
5: वो कहाँ
7: मिठाई?
8: आरबीआई कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आदाब, आज का तबसीरा लेकर मैं नूर सबा। भारत जैसे बहुत बड़े जमहूरी मुल्क के लिए मर्दमशुमारी कितनी अहम है इस बात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। मर्दमशुमारी से न सिर्फ मुल्क की आबादी की सही तस्वीर सामने आती है बल्कि इससे मुल्क के हर शोबे जैसे माशी, तालीमी और दीगर शोबा जात में तरक्की की हूबहू तफसीलात का पता चल जाता है। मर्दमशुमारी के जरिए अमूमी तौर अवाम के बुनियादी सतह पर तमाम तर हालात का जायजा लिया जाता है ताकि मुल्क की हमगीर तरक्की के लिए सूबे तैयार किए जाएं। असल में सन 2011 में मुल्क की मर्दमशुमारी कराना तयशुदा अमर था, मगर कोविड बीमारी की वजह से ये जरूरी काम अब तक न हो सका। अब 17 मई 2026 को यूटी जम्मू कश्मीर में सेंसिस 2027 फेज 1 शुरू हो चुका है जो 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान शहरी अपना सेल्फ इम्यूनोरेशन मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद जून महीने की पहली तारीख से आखिरी तारीख तक सरकार की तरफ से मुतय्यन किए गए मुलाजमीन घर जाकर इस सेल्फ इम्यूनोरेशन को चेक कर सकते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले बारामूला और कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने भी इस काम में पहल करके अपने अपने इजला के लोगों के लिए इस बारे में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर दिया, जो कुलगाम जिला में पहले ही दिन 10,000 का हदफ पूरा करने में कामयाब हो गया। यूटी के तमाम जिला डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने मर्दमशुमारी को आसान तरीके से तकमील तक पहुँचाने के लिए अपने मातहत पंचायत भवन, पटवार, हल्का जात, ब्लॉक दफातर और तहसील दफातर के سرکاری ملازمین کے نام احکام جاری کیے تاکہ سرکار عوام کی کلہم حالات سے باخبر رہے اور وہ زمینی سطح پر ہو رہے کام کی ترقی میں سرعت لانے کے لیے رقومات اور منصوبہ بندی بہم رکھی جائیں۔ اس سلسلے میں سلپ امیونائزیشن کرنے والے شہریوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں اطلاعات درج کرتے ہوئے تمام تفاصیل حقائق پر مبنی ہی درج کریں۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गार स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: न्यू मोमेंटम टू बायलैटरल रिलेशंस। He said the discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership, launching of Joint Innovation Partnership 2.0. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that a defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government. On the last leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in the Italian capital, Rome, on a two-day state visit tomorrow. He will hold bilateral talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni. More from our correspondent.
3: Mr. Modi will hold delegation-level talks with the Prime Minister of Italy with a focus on maritime security and strong connectivity. Italy gives India access not just to Europe, but also to the entire Mediterranean region. It is significant in view of the supply chain partnership and the defense partnership. This five-nation visit has been far more than diplomacy. It is about securing India's future energy routes, AI partnership, semiconductor access, defense manufacturing, and global interests. This is Suparna Bhatia for Akashwani from Rome, Italy.
2: Back home, a high-level U.S. industry delegation held discussions with Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh in New Delhi today. The deliberations were held on emerging opportunities for private investment and industry collaboration in India's nuclear sector. The delegation includes senior representatives from the U.S. nuclear industry, business stakeholders, and officials associated with India-US cooperation in civil nuclear energy and advanced technologies. Speaking on the occasion, Dr. Singh said that India and the United States share a strong and future-oriented partnership in science, technology, clean energy, and emerging sectors. Referring to India's long-term clean energy goals under the vision of Viksit Bharat 2047, Dr. Singh said, India aims to increase its nuclear power capacity from the present 8.8 gigawatt to 100 gigawatt by 2047. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India has set a target of achieving exports worth $1 trillion this year and $2 trillion

0: नतीजे सामने आए हैं, जिसमें दोनों मुल्कों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर सब्ज जामे शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है। ओस्लो में अपने हम मनसब जॉन्स घार स्टोर के साथ वफद की सतह की बातचीत के बाद आज एक मुश्तरका बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उजागर किया कि दोनों लीडरों ने भारत नॉर्वे ताल्लुकात को बेहतर करके उसे सब्ज जामे शराकत दारी की हैसियत देने से इत्तफाक किया है, जो कि साफ तवानाई नीलगु मईशत ग्रीन काया पलट के शोबों में तआवुन को बेहतर बनाने में एक अहम संग मील है।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनी ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने भारत EFTA तिजारती और इक्तसादी शराकत दारी के मुआहदे से हासिल होने वाले वसी मौके को भी वाजह किया है। इसमें शराकत दारी को हाईटेक AI स्टार्टअप्स के शोबों में मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने की गरज से तवानाई पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: इस बाहमी मीटिंग में सेहत से मुतालिक हाईटेक हल, डिजिटल सेहत, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के शोबों में बहुत से मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की खलाई एजेंसी के दरमियान एक मुफाहमत नामा दिफाई शोबे में ताल्लुकात बेहतर बनाने को यकीनी बनाएगा। तआवुन के एक सहरुखी समझौते पर भी आज दस्तखत किए गए। इसमें भारत और नॉर्वे भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करते हुए आलम जुनूब के मुमालिक को इंसानी तरक्की के हल मुश्तरका तौर पर फराहम करेंगे। नॉर्वे के वजीर आजम ने एक अहम बयान में टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की क्यादत को तस्लीम किया है। दोनों लीडरों ने जाब्तों पर मबनी आलमी निज़ाम में अपने मुश्तरका एतकाद और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अपने अहद का इरादा किया। करीबी ताल्लुकात के तई जज्बा खैर सगाली के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के इज्जत माव शाह हराल्ड दी फिफ्थ के जरिए रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रांड क्रॉस अवार्ड दिया गया। जनाब नरेंद्र मोदी स्वीडन का अपना दौरा पूरा करने के बाद आज सुबह नॉर्वे पहुंचे थे। वजीर आजम ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कहा कि बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाकर एक जामे शराकत दारी में तब्दील करना, मुश्तरका इख्तिराई शराकत दारी 2.0 की शुरुआत करना और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनू जहानत के कॉरिडोर का आगाज करने समेत ये मुजाकरात इंतहाई बारावर रहे। बातचीत में बाहमी तजारत को आइंदा 5 साल में दुगना करने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की अपनी हम मनसब मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर कल इटली के 2 रोजा दौरे पर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी वजीर आजम मेलोनी के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्गियो मेटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने की गरज से कारोबारी लीडरों से भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 से 20 तारीख को इटली के दौरे पर होंगे। उनका ये दौरा 5 मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में भारत की जामे शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करना है। वजीर आजम की इटली की वजीर आजम के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे, जिसमें समंदरी सिक्योरिटी और मुस्तहकम कनेक्टिविटी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इटली भारत को न सिर्फ यूरोप बल्कि बहिरे रूम के मुकम्मल खित्ते तक भी रसाई फराहम करता है। ये अम्र सप्लाई चेन और दिफाई शराकत दारी के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। उनका 5 मुल्कों का यह दौरा सफारतकारी से कहीं ज्यादा हैसियत रखता है। ये भारत के मुस्तकबिल के तवानाई रूट्स, मसनू जहानत की शराकत दारी, सेमी कंडक्टर की रसाई,

0: mai nimeni, dar și de lege speranțe în opră. Te lingai dai de model school gune fia, thore ina june, 5 nam, 6 ake te nam, te ne model school gune fia, competition ji gote ote, ta ki ke te nam, mimau suna gyushin, te ne ngata model school gune na, te ne ngata circa gune, young school gune sa, sa pik soso ji chi dundu, te o ke te nam, dem so ne sun la, te ne ngaya, nyeja gula yang yo pulin, te ne mimau sama la tu gyush kyo den ki, model school spo ke te nam, gyura zar na, te ne nyeja gune na, Tene gergan gune na chi gyurja yongse duk, tene mimang gune na chi gyurja yongse duk, teo gyurja cheze fia tene ngay daimston jiri ke tena talbik choso le, tene ee ngata yeme modern school ang tu saza chesan gale. Tene tene o jor kulin, tene ya ngay daire ke tena National Council of Teacher Education le ke tena daire samma la tene central government eze tena ole ngata mentorship jojo se le. Tene ngaye diet leang ngeja gula chi mentorship le, chi guide go sazad na, tene ngaye ke tena diringi kane khacha chosan mahala le tanga diet kakur pe sula, tene ngeja ke tena ee model school goa chi roads ramda go sazad na, tene training e sula, tayang ke tena yang penye amangyo ngaya taa diet la tasa tang yanche se uzu gyong du gaya le, tene fe ngeja gula ke tena chi lazwa chun chan chon yanche ta TLM choche shigindo, ya program chun chan choche sindo, tene ngeja wana mule roksan thopche se gospari du gaya le, thop nyanche du gaya.
1: Lanjas yang testing ne speston lopta gyurche si sirka tang lasgul guni skorla mola zaches tang yang eguni thoga rox guni skorla mola zaten jik tang yontan laskung si ponbos ku jap delda nang me izuk mola jaz
2: changme sanghala ta nge nge me yulpa lanjas goba member changma la khetna mubarak chin tene nge ja school bo khetna chikpa tam khetna village sa school gyuche se fia nispa ऐसा मॉडल स्कूल चोचे से फिया निजा चंगमा मुबारक शिन निंग तकोना चंगमा मुबारक शिन तेने ई स्कूल वो ऐसा मॉडल गोमा गता ऐसा विलेज ऐसा स्कूल चोचे से गता चर्जी गेट पिन हलाले तेने तेवे का गता छगला जाप चिसला तरुण सुच गोर्चेस दो तेने ये वेना गता काले मोरं करिकुलम रिचोचेस यो तिजु गुजु मंगपे गोरोग जुस पसं तेने वीसी काले दंग का छता नाउचु का पलजोर मुने मोला रक्की जक्षिक ऑफिस लाश क्यों तेने कौने मोला रक इवो इ लास पे ना मंगपे गोर दुक तेने गाता है चे ना इवो खेतनं दक्षा मॉडल स्कूल मुन ये जे मने ग्योक्सपा जात दुक तेने इवं मॉडल स्कूल जिक चो ना मोला रक पिन हलाय तेने तेन्ना ओसुस्तेंगे मैडम यापू डिस्कस चोस्तेना तेन्ना जना इमीडिएटली खेतना गाय निजे स्कूल वो खेतना मॉडल स्कूल है ना चुचुक्स भी नहीं आले तेने ता ई स्कूल वो खेतना मैं अब सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैडम के लीडरशिप में हमने इस बार 132 मॉडल स्कूल्स ले में बनाए जिसमें इनरोलमेंट इस बार हमारा 1200 के करीब वहाँ पे इनरोलमेंट हुआ मैम थैंक यू सो मच मैम के एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते ही सच में मैडम ने एजुकेशन फील्ड में इन्होंने रिवोल्यूशन लाया जो काम हम दो तीन साल में नहीं कर पाए उन्होंने मैडम ने एक ही साल में करके दिखाया थैंक यू सो मच मैम सच में मैडम से हमने बहुत कुछ सीखने को हमें मिला सच में मैडम दिन रात एक करके हमारे लिए मतलब मैडम काम कर रही है हमें मैडम का फुल फ़ायदा उठाना चाहिए ऐसे टाइम पे थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम तेने दांगा के तनांग याले सतो कर दिया मांगा पेरेंट्स डे या छाचे संगा स्कप्स थोप्स तेने तेवे का गोमांगा माने ऑफिस लास माने मंगपे ग्योतिन तेने जुजुंगा माने योंग मिलियन ऑफ जुस्पा तेने खोने वीसी नांग गोबाउन मा एक्टिव जुग से तो खाले ले तेरे उमाला रख ते मैडम लेंगे ना माने कज़ो अश्क्योत गोसें ची लास यो तंगे नांग थंग से अश्क्योत माला रख तेने आका सों से तास पा दिंबा खेत नांग माने माने ngaa tsuchyang iwu matsum ki ngaa khetana sato karga mena dukse tune parents day stas tenok mane ma samjale nga iu samalapin nga ladak se khetana top school jina dukste nge i parents day wol tas te in samba yo arapin che jena thun khetana ma confident dukpin ma tapu dukpin yale demba tene khon la khetana language ka command dukpin le hindi jena english tang na ladak se spera tang na te thun dembe ma confident dukpin yale teo chief ye juna tene sato kargyam jigzena samshit thagri yul jike nokle इन नंग तेने पेरेंट्स नंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है जस्ट देखे तो ना ते स्कूल वो मत टॉप स्कूल जी डूबते तो क्या ले तेरे कौन है आका खेतना ड्रामे छून जिंगाया प्रेजेंट चोस ते ना स्कूल ना ची एक्टिविटीज छो ची खोने लास्ट छो छकलास छो ते संगमा के तना ट्रे ड्रामे थ्रू गा एस्ता ना जस तने दिमा माने इंप्रेस छचे से खोने दुगिया लेते स्कूल वो ते वो जेस्चे से मतलब होंगे ते हो जत कि जहां पे खेचना कम्युनिटी इन्वॉल्व योत ना पेरेंट्स को इन्वॉल्व योत ना तने ते स्कूल वो आगे खेचे सकना स्वयं रुका चोंगे चिस मेरो गले सातो कार्यक्रम जैसे जगह का खेचना इसुक स्कूल तक पोचो नेनतना तने नेमे स्कूल होता ngata mana mana ladas ta choro mana ngata hindustan ne na sangme sang ta po school ji chwa ngen chis luk sama ra hesa halale jese na ine na community involvement sangme sang zaruri to kya le te ngate heme na yonta ne na khaspa khaspa sama ine na ajuk tano ais officer ips officer tappe sang tappo officer sama ngeme na ajuk tano tene khone ngata guide chachi sano te na ne khas kar ka chetan nang chukle काउ गाता खेचना एजुकेशन डिपार्टमेंट ना माने देंबा माने एसेट चिकन पे दक्षा खोन रिटायर्ड करते नो तेने खोने इनिशिएटिव का ई गाता खेचना लास्ट कुन मांगछा डुलते न्यामपो न्यामपो का पर जोडले मा मी खासपेक जुक्से नो गाता छंगमा पाता नो येमे ना तेने खोने छकलास मा गांशन जाते ने नो तेने तन्ना छुसला माने नेजा छंगमे वीसी इंच गोबा इंच तेने युलमी छंगमे खेचना मा शंटे इना मेहनत जदु तेने पक्का खेतना ई योंगचेशने तुसे ना ई स्कूल वो खेतना मा टप्पो स्कूल जी गुडने चे तो हालाले बाकी ने इना उजिन की नेजे खेतना कंपा चिक्स पाजत तेने एजुकेशन डिपार्टमेंट दे कंपा नीस पॉइंट जत ने हला ची नेजा रॉक्स कोशिश यतना लाई माने टाइम टू टाइम भूले न्याले तेने मतलब ने इना उजत तेने नेजा छंग में देंबा गाय का लोकल जाते टून इना गवर्नमेंट स्कूल ना साला जाचिले देंबा गाय खेतना माने फंपो छा मिचु माने ची नेनका नाय रॉक्स जाचे सिनो दक्षा नाता लेना मॉडल स्कूल सुमचु सोपिस डुबसे तोनो हालाले तेने ते स्कूल गुनेना दक्षा नाता गोंपा जराचो सिने नाता सापु स्पितु तेने स्कारा मे स्कूल तेने आईबेक स्कूल देंबा ते स्कूल गुनेना एडमिशन इफ या जक्तु नाय खेतना सफारी छि या नाय खेतना फोन यो आमोले कि नाय खेतना इ थु नेन तो चिक चिक नेन निस देन जेंजा जक्तु नाय खेतना मैडम इवन मैडम चपांग नाय खेतना इ स्कूल लेना एडमिशन इफ या खेतना नाय इजु गा आमोले सफारी छ जो सामोले तेने ते फिये खेतना नेजंग खेतना नेमो अंग खेतना इना चो स्कूल निजे जाचे जाला जाचे तेने बाकी खेतना ngai छोकना चन कमी पेशी माने ngai लूस मिशो केले
1: लंगेस एन टेस्टिंग नेस नेमो युली स्पेस्टोन थोरिन लुप्टाबो स्पेस्टोन लुप्टे छुल्ला ngojin jate stingne kazuk rokrik yong goshe jino igunis korla mola jatin jektang inna lopte mentor yang khakur soma skujab sering tundubis izuk mola jats
3: tene chhamme sangana ta tene ngai skuli mentor coaches la tene chief education officer madam dalda namba thuji shi jwa dela tene khon kete tene secretary tene madam banu parba juste tene da ni da phala tene mora la pinyala tene nga tene iup ya khe tene go chhes duk sam chhes pa thank you so much yala tene me chokna ina jo school chhes pi anga ta classes chhes nang activities chhes pa ta nga ta girdar gun chhal chhap na yelo te go dhuna nok man nga chang thesom smira kala tanga ta lu sna nis nga go shira samara sna nis po ke tene nga ta girdan sangrik shi go shes po तेवो गा मन रोकेल थुप पर मेरम दलदा नमोस गता मन तेवे ना गा मन आज को गता बुरम आज को छाप लख बुरम नक्स मन गेल निस्पा गता के ता चितो मे चेस ना गता कंस्ट्रक्शन कते गता तेले बजट गोजदम यत ना तेवो के ता गता तेले दक्ष गता काल जा तेले जु जुस्ते तेने मेरम बारु पर बारु एजुकेशन डिपार्टमेंट छोरो त्यो खोन ओस तेंगा रोकेल रख तेने बाकी स्कूल मैनेजमेंट नंग इना के तेने एक्टिविटीज नंग ते संगमा चोचे लंगरा रोकेल थुजरा संगमा थुजे से जुले
1: लंगेस यंते सिने सोर्सपा सुशत सालजातिन जिकतंग ते तुसी रियालखख जम्मू कश्मीरी टोंसी चेनमो सुरबा स्कुजब 7.24 इजुक मलजात
4: माय पर्सनल व्यू अबाउट एजुकेशन इज दैट इट इज नॉट about coaching of students for passing examination. That is not education. It is to build human character, not to build, you know, not to prepare people for competitive examination. That is not education. That's part of education, but not real education. Education is about building human character, human nature. Now, there are four components of education, to my mind. One is knowledge impartment. Education imparts knowledge. That is one fundamental. Sporting spirit. Education also imparts sporting spirit. Sporting spirit means winning without pride and losing without remorse. That is education. Then moral awareness. Education is about making a distinction between right and wrong and siding with the right always. That is education. Then it's about creativity. Creativity means to add to knowledge, you know, something which is not around here. And you add something to knowledge, and that is creativity. And that is a part of education. So education is four components. Now, elementary education, up to high school, I would say, it is a crucible. You know, crucible in which people used to melt gold or something and then mould into something, some statue or something. So it's a crucible in which raw human nature is melted down first to ground zero level, and then you prepare, you know, characters, human, you know, characters for a civilized world. That is what education is all about. So it is about all-round development of mind and personality.
1: Langes yang testing net sorspa punso wandus tansui ladar speston thorim lopte ngodin zate itashis gozugi zagotan delpe sorspa sunshat saladatin jiktang sorspes kunon so ladar ujung nasde yontani skori tonsis kujab banu prabre izuk malzat.
5: Us samay aaj se lagbhag 7-8 mahine pehle jab ye initiative aap sabne is school ko lekar liya tha tab trust me, I was so inspired by this entire mission ki humne socha ki wo nimo hi mein hi aisa kare, kyun na isko aur schoolon tak lekar jaye. And Kang Chuk saab ko and Paljwa saab ko tab bhi yahi mera request tha ki school as a village, as a school keval nimo mein nahi hona chahiye, balki pure Ladakh mein har us kshetra mein hona chahiye jahan community apne bachcho ko aage leke jana chahti hai. Kyunki kitabe padhkar abhi sir Funsuk ne bhi bola, उससे पहले आंगमो ने भी बोला कि किताबों से हम अच्छा एक स्कॉलर बना सकते हैं. हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ लिख कर अकेडमिकली बहुत ब्राइट हो, मगर वो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने, वो तभी हो पाएगा जब हम बच्चों को किताबों से बाहर की दुनिया के बारे में बताएंगे. और ये कुछ हद तक इसका फॉल्ट हमारे ऊपर भी है कि हम बच्चों को एग्जाम्स और मार्क्स और एकेडमिक प्रोग्रेस में बांध कर रखते हैं और बच्चा बाहर के बारे में कम देख पाता और सोच पाता है. बट नन द लेस निमो द विलेज टुक दिस इनिशिएटिव और आप लोगों ने ही विलेज एट स्कूल का कंसेप्ट हमें दिया, तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमने इसको बोला कि क्यों ना हम निमो को एक मॉडल स्कूल बनाए जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन हो, टीचर सबसे अच्छे हो, पढ़ाने का तरीका सबसे नया हो. और साथ ही साथ जैसा कि आप सबका इनिशिएटिव था, हमें किताबों के बाहर जाकर बच्चों को रियलिटी दिखानी है, नेचर के साथ उनको जोड़ना है. यदि हम क्लास में बच्चों को एनिमल्स का कंसेप्ट सिखा रहे हैं तो क्यों ना बच्चों को बाहर ले जाकर बताएं कि कौन सा एनिमल कैसा होता है. तो आई रियली अप्रिशिएट, और जैसा कि मैडम दिलदर ने भी बोला कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, पूरी तरह से जो भी आपको सपोर्ट हेल्प चाहिए वो हम ज़रूर देंगे, मगर हम बदले में ये कमिटमेंट लेते हैं कि जो ये इनिशिएटिव हमने पिछले साल शुरू किया था विलेज एज अ स्कूल का, उसको आप सब, वो हर एक पेरेंट, हर एक वीसी मेंबर, हर एक टीचर, यहाँ स्कूल के जो एलुमनाई हैं, मतलब दिस स्कूल हैज़ बीन फॉर्चुनेट टू स्कूल सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स नॉट जस्ट ऑफ दिस रीजन बट ऑल्सो ऑफ लद्दाख. सो दिस स्कूल, दिस रीजन हैज़ अ वेरी रिच जेनेटिक हेरिटेज आई वुड से, जहाँ पर बेस्ट ऑफ द स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सर्जन्स हमें मिले. तो निमो को इन द रियल सेंस अब इस लेगेसी को और आगे बढ़ाना है, हमें बेहतरीन शिक्षा देनी है. और शिक्षा का मतलब केवल अकेडमिक नहीं, बच्चों को हर तरह से एक बेहतरीन एक्सपोजर देना है जिससे वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा क्रिटिक बने और अपने साथ साथ अपनी पूरी कम्युनिटी को आगे लेकर जाए. इस थैंक यू ऑल.
1: Langes yang stingjuga snemo yuli kuntus sospe tipa skujer sang regzini sospa tukjeche sungshat salat zat.
6: On behalf of member the Kanamjale, myself as kuntus sospa president and all the villagers of Nimo, I express our sincere gratitude to our respected chief guest, Madam Banu Prabhaji, and the entire education department of UT Ladakh for conferring this special status upon our school and for placing their trust and confidence in us. We assure you that people of Nimo, along with school administration, teachers, parents, and students will work together with full dedication and responsibility to make this Moral School a center of excellence in education, discipline, culture, and holistic development. With the inauguration of Ladakh Moral School and Ladakh Village as a School initiative, we now carry a great responsibility to uplift the education system in Ladakh. Achieving such an important goal will require continuous guidance, encouragement, and timely support from the Education Department. On our part, people of Nimo will ensure that no stone left unturned in raising our educational standards to a new level. May I also take this opportunity to extend special thanks to Saradak Group for taking rigorous initiative in completing the school beautification works within such a short period of time. I especially express my sincere appreciation to Ka Thupsan Gonpapa and Ka Tunduvendro Dinjam for stepping forward with extra initiative and responsibility to complete the high school beautification within a targeted time frame. The upcoming Ladakh Moral School will be unique and distinct from other moral schools. This educational initiative will function on the concept of village as a school, where the entire community becomes a learning ecosystem for the children. I hope everyone has gained a meaningful understanding of village as a school model, along with the new kindergarten syllabus and curriculum structure through the PPT presentation delivered by Village as a School Coordinator Ka Setanang Chugle and Village Core Committee Chairman Ka Paljumle. Our vision is to create a learning ecosystem where a child grows physically, emotionally, socially, culturally, academically through contextual, play-based and community support education. The Village as a School framework represents a transformative shift in early childhood and primary education. By grounding learning in mother tongue, play, community participation, this initiative will ensure a joyful, meaningful, and developmentally appropriate beginning for every child's educational journey. We look forward to working together with Education Department as one team and striving to establish a model institution from which school can learn and benefit. Lastly, I extend my heartfelt gratitude to everyone directly or indirectly contributed making today's program successful. Your presence and support have added immense value and joy to this holistic occasion. Thank you very much. Sammana Tukjeche Jule.
7: Naksangi Jange, Nangyang Namesis, Jubdunija, Nemo Yule, Punzog Wando Se, Danse Turim Lobdabo, Ladakh Spaceton Lobdesula, Ngozen Salkane, Dashir Kuzuk, Zat Kuzik Zatin Pin, Iskola Radio Report, Degrim Jaksanazats, Degrim Pulkanin Pin, Erikson Norbo, Ngashi Akashwani Lenijot, Sarichuzo, Chucharuk, Nathanyapongashi, Dere Degrim Yispawaton, Degrim Tampe Fiat Turingato Chuzo, Luntas Kermanish, Chusai Kayang Chalin, Tedesu Pargonswa Salazat, Julie J. Hind.